फुंग कहा मार्केटिंग ताको बुखु एफ एम उज्जैन दिन फुंग चंगी पांडवन रक जतन लामसगो 101.6 एवं सारा सपन दक मेगा हर जन रगो पांडक खाई तंग बयन रगो बयतंग तापोस र लिखिसिंग रनी ताको मार्केटिंग ताको बुखु नरक सालकामा पांडव कलखेन तापो गिदो कलखरी 2326253 नै थाम नै दक नै बाथाम 2326253 जों तिनि कक सालायनाय थानसा তিনি টপিক অংখা তিনি কক বক্রক অংখা থানস

जों सैमानो जों तुमुं थानजाके दंखायखै ग्राखे बासैमानो फियाबा खाग्लाय जाखिनखै सकाग जगै दंखायखै फियाबा जों बिसिमा बाय थांनाय ग्लाय थांनाय दिनैनि टपिक खांखै दिनैनि कक बखरखंखा थानसा तर कलखनेन तापकदि माने किसी ताकू बुक दरक पान खाई तक 101.6 एवं सारा सपन दक मेगा हर्जो फाड़ी ताकू चिंग खाला इन लॉप मुंग रसाप मुंग चिंग लॉप मुंग रसाप बैखना रहना है अनिता जमातिया

0: चीनी तिप्रा हस्ते नि करंग करंग आईटीआई रंग नगो आईटीआई ओ एडमिशन नहरना नि बगै कमिबुलाय सानजा गै तंगो कमिबुलाय रना नि पाइथक सालमारी ओबीसी नि जुलाई तानि साल जि सालमारी जरानि बिसिंगो रंगमारी क्लास 8 पास ताय माध्यमिक पास
1: भारत हाकतो निजतनि सले कुचुक बेरमनि सिभिलियन अवार्ड्स पद शकत नि बगै कमिबुलाय याफाडा नि बगै कबक जाखा खुर्चा जाक थाय 1954 ख्रीष्ट बिसिनि सिमिनो कग्रबाय तेरों थंगमों साखनाय लुकु हामक्रायनि सामुं तांनाय सय सिमुं ते तांग्रों पाइफाल ते स्नामुं आकरगो पाइफ्लाइयावै सामुं तांनाय रक्न अ हाकतो निजतनि खुसुक बेरमनि सिभिलियन्स एवार्ड पद्द सकात याफार जागै तंगो अ सकातनि बिसिंग तंगो पद्दवि भूषण पद्मभूषण ते पद्मश्री 2027 बिसिनि लुकुचंग्राइदा सालनो कितिंगे भारत हाकतनि पद्दा पद्द सकातनि बागै अनलाइनो कयला याफानानि नांनाय पद्द सकातनि बागै कयमुं याफाना नांनाय https://awards.gov.in अब पोर्टालनि बिसिंथि खायै अनलाइनो कयलाय यासाक जागै दङ अनलाइनो कयमुंग्लाय याफानानि बागै नांमानि कयलायते सुक्रुबुइ ककथुम अ पोर्टालनो माननाय बिसकां अ जुलाइ तालनि सालमारि थामथिसा 31 जुलाइ 2026 सालमारिनि बिसिंगनो अनलाइनो कयमुं याफानानि नांनाय हिनै साजाखा हास्ते हापांनि जेनेरेल एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन पलिटिकेल नायखुनि बुखाखते अ ककथुमा साख्लाय जाखा
0: आव ककथुम रखना बायखा ताबो सों सेबो गबरक्लामानि खनालायनो हाईकोर्ट अफ त्रिपुरा ओ बेबागि बक्सा सुथाय कायसि ब्रैओ सुबुंनानि कयमुंलाय सानजाखा बक्सा सुथायका जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेन्ट अ बक्सा सुथायनि बागै रोंमारि नायनि नांगौ गसिजाग इउनिभार्सिटिनि ग्रेजुवेट लगेव कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट बतावनानि नांनाय हिनै साख्लाय जाखा अ बक्सा सुथाय कायसि ब्रैनि बिसिंग आन्डिजाब कायदक एस टि कायनै एस सि कायदक उमर नायनि नांनाय बिसि सिसारनिसिमि बिसि ब्रैसि नि बिसिंग कयमुंग्लाय रानानि पाइथाक सालमारि अ बिसिनि अगस्तानि साल सि सालमारि जरा वेबसाइटका https://tsc.nic.in वेबसाइट आबुनो करिबो रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड अ गोबांमा बुक्स आसुथायो बरक सुफुंनानि कयमुंग्लाय सानजाखा बुक्स आसुथायका टेक्निसियान ग्रेड वान ताय ग्रेड थ्री सिनि नर्थ इस्टनि बागै बे बागै बुक्स आसुथाय तंग काय सिनिरा सा इयाखौबा 701 रोंमारि इनानि नांनाय बि एस सि पास इलेक्ट्रनिक्स कम्पिउटार साइन्स आइ टि आकरक ताय ग्रेड थ्रिनि बागै क्लास टेन पास ताय डिप्ल'मा होननानै नांनाय उमर होननानै नांनाय बि सि सिसारनि सिमि बि सि थामसिनि बिसिंग कमिमलाय रोनानि बागै रेजिस्ट्रेसन फि नांनाय आन्डिजार्भनि बागै 500 एस टि एस सिनि बागै 250 वेबसाइटिंका www.rrb.gov.in वेबसाइट कमिमलाय रोनानि पाइथाक सालमारि बिसिनि जुलाइ तालनि साल सिसुकु सालमारि जरा टिपेसिनि बाखाखै किसा बक्सा सुथाय बरक सुफुंनानि कयमुंलाय सानजाखा बेबागै बक्सा सुथाय तंग कायसारा थामसि बक्सा सुथायनिका एग्री अफिसार ग्रेड वान रोंमारि नांनानै एग्री बिएचसि उमर गोबां कखमानिनो बिसि ब्रैसि कयमुंलाय रोनानि पाइथाक सालमारि बिसिनि जुलाइ तालनि साल सिसार सालमारिनि जरा वेबसाइटिंका www.tpsc.tripura.gov.in वेबसाइट
1: फारिताबो खोनालायनो नबार्तिबनि कक नबार्तिबनि सिखांबारानि ककतमानारोगै सायमानखा नखा सुमि कलबजाग दंनाय वातै गोबांनि सिमि किसानि सिमि गोबां फेरांगगै त्रिपुरा हास्थेनि जत जागावनो फायमानो तुंमारि दंगानो

0: तुंग सामारी 32 डिग्री सेल्सियस तुंखलाइमारी 26 डिग्री सेल्सियस नि गाना गिरिमो मियानि तुंगमारी समानि अनुजाखा 29.1 डिग्री सेल्सियस अब तुंगसामारी तुंखलाइमारी इंकै 25.2 डिग्री सेल्सियस बसकां दामनि सिब्रियो सिबुक सामारी सिबुक खलाइमारी तंगानो 98% ते 82% नि गाना गिरिमो थांनाय दामनि सिब्रियो 58.1 मिलीमिटार वाते फाइका कखाय मिया फुंनि दामबातामै सती थामचिनि सिमि तिनि फुंनि दामबातामै सती थामचि जरानि कक साजागो हजा खलाय रेगजागो त्रिपुरा हास्ते गनाङैनो वाते गोबां बाक्सा बाक्सा आमसायो वायफानो मानो आसिक जरा खानाबैखा नबारदेबानि कक फारिताबो खालायनाय रोजाबमुं जोंनो रोजाबमुं रोजाबै खानाय
1: अरुण जमातिया

जरा करी कक नाम मानी कक सका हम मारे तीन बगे आसिक जतन खुलबाइक बेसकांग सालमान लाइफ।

मा थांनाय दामनाय जिब्रियो हास्तेनि बेबा खांखर फेरांखगै किसानि सिमि बुंखर खरखे वातै वावै मानहुनै हजाक मुंरखा नबारतिबार नायखं दिनै सालनि साखानि तंमारि 32 डिग्री ते खामानि 22 डिग्री सेल्सियसनि गानागिनि तंगै मानो दिनै आइजुगो खामानि तंमारि तंमानि 25.2 डिग्री सेल्सियस फुंनि दाम बातामै सति 32 जरा वातै वाखा बाचि 4.6 मिलिमिटर ককব্রক বাই ককতমা পরিমং তাবুক জরাতে অরণ পাইখা উলনি ককতমা আওয়াই ইঙ্গানের সানজা দামসনি তাময়ী সতী ব্রীচি বাও

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

आओ खनाई चंगले मने हासुक निरे चामों पांदाओ जादो निरे सबजाक रे चामों खनाई पाले का विशुलोक स्मी देवर्मानी खरांग बाई रे सबजाक जादो निरे चामों अजरा हानो है ते तांशा खना थोतो ग्रे चामों जोतो निबागई

0: आउनुरुक तिउन खैतङ 101.6 मेगाहर्ज एफएम उज्जैन तो हासुनि रेसामुंग पांडा अजरफादि तेतांग सखना ततक रचामुंगनि फाइसिंग थांगलाय इसिवान तामहिन आफायनिगे खना ततक रचामुंग हाने हाय तेतांगसा
1: tang janaine sab tang

0: Aw fading ga jara hano hai kok dok 232-6253 te baskango 0381 dana ta pokti te kisa katal number 9485007172 aw kok dok number narok kringai mano narok call khai hore number narok muitoman mani kok rok no bonor ga jara share khai mano shawi mano phadi kaisa kok dok ga jara na en sabto hello lam so ga ta kok di por ka ham
1: देवर का हम भाई नो आंखे काफली या थाई ने आशा को मन मरा सिंह
0: दो शादी ताको
1: गान रोक देखने मान
0: ए रचाम रोक तां खनारी तोंग दो खनाई तोंग दी अब फिर वा और जरा हंगे तेरे रिक्वेस्ट पांडा या मुझे मानो पांडा तीनी मुझे मान माने को ग्रोक तोंग के मान नंग सावी मानो ता दो आकन खनाई तोंग दी हंगे दो हम भाई
1: दो आकन भाई
0: आउ तिनी तो कोई हर मंग पांडा या बा फिर बात साइड जोंग ना यंग जे मान संग दरोग नो हिंदी तो के ते को ग्रुप नी रसा मंग रोक है ना नी ते यो जरा मुझे मानो पांडा के जो नो रोक है ना रोग नी मुझे मान मानी कोक लाम रोग नो शेयर कहीं मानो शाहरी मानो ते कैसे कोक दुक हेलो दी फोर कहाँ ते लाम सोगा ताकुक दो शादी ताकुक देनी
1: को माने जो तंगे माने को हो आकाश बनी है सिंचे तो माने रेडी है सिर्फ देखना ही नहीं है भाई तंग वैसे ये नंग सिंह बंग था सिंह देखना ही चमता वो हस्तनी तो सामु पांडा देखना ही चमतो जाए माने हस्तनी तो सामु आते मुझे देखना ही ना शुरू ताई को आज का फायर देखना ही ना कष्ट भाई
0: ताऊ तंग भाई खेलाई तो एप से देखना ना
1: माने उको भाई खेलाई मानो ए उको माने एप देखे खेलाई मान दो गाय और रेडियो से पैगो
0: Wati rong ni bagai, fano network rong maya angi mano hai deba technical problem ni bagai. Kok kerei neng?
1: Mana bay mana apa? Mai cuma kumang thang ta, mana rom yang thang ta cene.
0: Do neng apps di panak kena kabelai singa do angi shadi ni mui cuma mana kok rok shai kena rana da ojora.
1: Mana angai tay rom ni angi kita kaji mana kang thali ada bay.
0: Do kok kerei hambay. Pagi tega sekok duk.

आउ दिल वाले तो कि कुमार सानी खरंग बारि सब जग्रीसा मंग जरा खनाई दौले मानी मैदो मानो पांडाव खबंग मारे किसी खनाई दौदी लगे पायसक जरा तई

खनाइथोंलेमाने जिगर तोकेनी पंकज सुदास भाई साधना सरगमनी खरांग भाई रसाबजा ग्रिचाबंग मोइदोमानो पांदाओ खापंगनी मारकेचिंग ताखोकते बखुकचोंग मोइदोमानो पांदा तिनिनि बागै अशग्नो खाखायो नरक खना थकजोबबाय खना जे रसाबमुर खनारमानी अरजामुरगनो नरकनि खानो सुबुङै मान खनानै फियाबा आसगबाय पायाखौ देव जरातंखौ ते ते जराव ते किसा जरावबो जों ते किसा जरानि यागुलनो हाबलायन खनाथथ' खरां पांदा आव मैदमानो पान्दा हेके तिनिनि बागै असुंनो उलनि सालगो मैदमानो पान्दाव मा हेकेनो मैदमान माने कक रंनो जों तुबुयै फायलायनाय ककदोंनि बिसिंथै गोरोंलायनाय खोनायदोंदि लगिरै दंदि।

अखने बेलेखा विश्वनाथ देवबर्मानि खरांबाय रिसाबजाख रिजामं जरा देखिसा तंख फियाबा सायतगाना जेमानसाख नरग नरसामं खनारनानि खनायतंदि पांडा सयाकरै

खनाइदोंग लेबानी विश्वनाथ बाई मानसि देवबरमानि खरां बाई रिजाब जाग्रे जामुं फियाबा तेरेब तेरेब जरा थाङै दंमा बागै अजरा फायदि ककबरक ककतमा बुबाक्रक खनाइनि हालायना एफएम ककबरक ककतमा बुबाक्रक खा अजरा राष्ट्र बखरक याक्सु सिपि राधा कृष्णा नतिनि उरिशानि भुवनेश्वर बेरेमाव दङ भुवनेश्वरनि उरिशा युनिभार्सिटि अफ एग्रिकालचार एन्ड टेक्नलजि एलेटर्स अफ अथराइजेसन याफर मुं सामुं बुतां चेंगै रमा पान्दा मानजाखा राष्ट्र बखरक याक्सु मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदी उल्थाम बेरेमनि कुचुक अजारकनि कुथुम लाइमाव मानजाकना बागै भिक्टोरिया गभर्नमेन्ट हाउस थांसगैक्या केरलनि कुचिव संजाजाक ब्रिक्स बोरै मन्त्रि रकनि ककलाम सालाइमा तिनि पायानो भारतनि तैदुल मुंग अ आसुक लाइमानो संजाका पञ्चायती राज ककसंलाइनक डेस्टिनेसन त्रिपुरा बिजनेस कनक्लेभ नैसाइ नैजि दक तिनिनि सिमि सालनै हाबानिया हायुं बेरेमनि बानि खलाव चेंजागानो सारिग पान्दानो चेंगै रवानो मन्त्रि अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा अ तालनि नैजिनै सालमारिनि सिमि चेंजागानो हास्तिनि लाइबुमा गोनाङै जिब्रै मोताय तेय बानि खाबनि मारिकिजिं जरा तो पाइथांनि बोखाखनाव फाय सक पाइजा खायादा आव फियाबा थांदे थांदे अककनो साना मुसुंग साखनो गाहामनाय तेय मानखे बुनि बागैब गाहामनायदि ते तमुनो जों मानखांगे बुनो सुबादि ते साना थांगा हांगांगाय जों गोबां मा सामुं खायदाय खायना नांगौ सागनि बागै बुनो बागै आव बुनो जों गाहाम सायमानियाखे हामियाबो दासादि थांदे थांदे अककनो सानाय सागनि बागै गाहामनायदि मानखे बुनो बागै गाहामनायदि जतनि सालनो गाहामोंथों जतनि थिनांनो गाहामोंथों उलनि साल रग' हायनो हाय ककदुंनि बिसिंथे गोरों फिरानो होनै आं ललिता अरनो बासा सिवानो जतनो हामबाय खुलुमबाय गा थांदे थांदे खोनाथतक रोजामुं देतांसा

0: 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: নমস্কার প্রিয় শ্রোতা, 101.6 MHz আকাশবাণী FM উজ্জয়ন্তী। এতক্ষণ আপনারা ছিলেন অনিন্দিতার সাথে, এবার আমি দেবাশিস আপনাদের সাথে থাকব রাত 11টা পর্যন্ত। আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান ইচ্ছে ঘুরি। আজ আমরা কোথায় ঘুরতে যাব জানাচ্ছি, সাথে থাকুন আমাদের।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: छमछम शराबर से,
1: सांवरी घटा से शराबर से,
0: बादल से छमछम शराबर से,
1: सांवरी घटा से शराबर से,
0: बूंदों की बजी पायल। हाँ।

हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयास

0: तो को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण

0: समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10

जिसे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया। सेकंड, जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए और आज